0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow. Suron ka Lakhnavi Ehsaas.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का।

और दोस्तों सुपर हिट सॉन्ग से ही पर वाइंड अप करते हैं। अगला प्रोग्राम आपके लिए लेकर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, संदेश आपके गीत हमारे, लेकिन उससे पहले बीच में होगा न्यूज ब्रेक, तो बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुने मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा सहित सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है। विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती, इसलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिक भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम वृंदावन में नवनिर्मित कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का भी लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थियों को पहले OTR पूर्ण करना होगा, इसके पश्चात ही वे विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली परिसर में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक भर्ती आयोजित होगी। सेना भर्ती रैली के दौरान 12 जनपदों बरेली समेत बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संबल, पीलीभीत, हरदोई, फरुखाबाद और बदायूं के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सेना भर्ती के निदेशक ने

अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने साथ रखें एवं सभी जरूरी कागजात अवश्य साथ में लेकर जाएं। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के लिए यह पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। और अंत में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने कल हांगकांग को 147 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 124 रनों की पारी खेली। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 56 रन पर सिमट गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप 12 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कीप लिसनिंग 200.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
4: ये लीजिए, हाजिर हो गई मैं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, 11:04 तो सुबह के। और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होंगे और खूब सारे पकवान तो बन भी चुके होंगे, खुशबू आ रही है मुझे यहाँ। और तो गोविंदा आलारी करने के लिए आपने तैयारियां कर ली होंगी और शाम को मटकी फोड़ने का भी तो इंतजाम कर लिया होगा। कितनी सारी अच्छी चीजें आज होने वाली हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा हैपनिंग सा हो रहा है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, और साथ ही कॉल्स तो आप हमें करेंगे।

खरीदारी करने के लिए आपने तैयारियां कर ली होंगी और शाम को मटकी फोड़ने का भी तो इंतजाम कर लिया होगा। कितनी सारी अच्छी चीजें आज होने वाली हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा हैपनिंग सा हो रहा है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर, और साथ ही कॉल्स तो आप हमें करेंगे ही, तो बस तैयार हो जाइए इतने सारे ढेर सारे फन के लिए और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे विद यू आज रोली शुक्ला।

0: खीरी में आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं?
1: हम आपका कॉल लगाए थे और आप गाने बहुत अच्छे प्ले कर रहे थे, उनको एंजॉय कर रहे थे।
0: वाओ, दैट्स ग्रेट, हाँ, थैंक यू सो मच। तो बताइए, आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: जी, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे अच्छे से बोले और सभी के साथ मिलकर त्योहार सेलिब्रेट करें और सभी को प्यार
0: सभी को प्यार करें। हाँ, सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, तो सच कह रहे हैं आप। तो आप सबके साथ प्यार से रहते हैं अपने घर में? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से हमें कॉल करना मत भूलिएगा, हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और फिलहाल दोस्तों, आप भी इनकी तरह हमें फोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और साथ ही अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: और गो गो गो गोविंदा करते हुए हमारे पास एक कॉलर भी आ गए हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। कौन है ये कॉलर और कहाँ से इन्होंने कॉल किया है, चलिए देखते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: अल्तुमा सलीवास कर रहा है लखीमपुर खीरी से।
0: अच्छा, तो बताइए लखीमपुर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरो का लखनवी एहसास।
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, सुरों का लखनवी एहसास।

वाह क्या बात है, आज है जन्माष्टमी और सभी घरों में इतनी सारी जोर शोर से तैयारियां, मार्केट में धूम है, गजब की धूम है और लोग अभी भी कान्हा जी की ड्रेस लेते हुए, कोई बांसुरी लेते हुए, कोई मोरपंख लेते हुए तो कोई मुकुट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और सुबह से ही बाजारें एकदम लबालब भरी हुई हैं, लोग जो शॉपिंग कल नहीं कर पाए थे वो आज करने गए। भाई आप क्या कर रहे हैं बताइए हमें भाई, कि इस समय आप हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और उसके साथ क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे हमारे पास कई सारे मैसेज आगे इतनी देर में, और हमारे पास ब्रह्मेश सोनी की आईडी से मैसेज आया है। मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर से हूँ। सबसे पहले आपको और आपके पूरे रेनबो परिवार को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। संदेश है कि ये कहना है कि जन्माष्टमी को खूब मस्ती से मनाएं और सबको खूब सारी मिठाइयाँ खिलाएं, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिन फूलों और चीज़ों से मंदिर को सजाया है उनको इधर उधर ना फेंकें और उनको कायदे से किनारे रख के विसर्जित करें। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और हमारे पास वकील अहमद का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज अच्छी लगती है। संदेश यह है कि बारिश से नदी नाला पानी बहुत हो गया है तो बच्चों को ना जाने दें, और चेहरा सुंदर होना हो शब्द हमेशा सुंदर रखना, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं चेहरे लेकिन शब्द हमेशा याद रहता है। बिल्कुल सही कहा, और कुछ शब्द दिल में अटक से जाते हैं ना, चुप से जाते हैं, इसलिए शब्द हमेशा मीठे होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए, है ना। हमारे पास FM रेनबो लखनऊ के लिए संदेश किन्होंने भेजा है, भाई कौन है ये, लिखती हैं नमस्कार FM रेनबो लखनऊ, आज के पावन पर्व के अवसर पर FM रेनबो लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार सभी

जी अपने सुख शांति प्रेम और खुशियां लेकर आए, मेरी यही कामना है आज के इस पावन दिन के लिए। सभी का दिन मंगलमय हो। और FM रेनबो लखनऊ की पूरी टीम और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये है अनुज कुमार श्याम नगर से, दरियाबाद बाराबंकी से इन्होंने हमें मैसेज किया है। थैंक यू सो मच। हमारे पास अल्ताफ खान का मैसेज आया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। बस इतना छोटू सा मैसेज भेज करके आप कहाँ चले हैं। हमारे पास अनिल कुमार का मैसेज आया और ये लिखते हैं, माखन चुरा कर जिसने खाया, बंसी बजा कर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया। तो ये लिखते हैं, रोली मैम आज के लिए मेरा संदेश ये है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमने उनकी मदद करनी चाहिए और अगर कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं तो हेल्पलाइन जाकर के गवर्नमेंट वेबसाइट पर या कैसे भी करके उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया। फिलहाल और भी मैसेजेस हैं लेकिन अभी एक गाना बिल्कुल तैयार है आप सबके लिए, एंजॉय करिए। वापस आती हूँ कॉल्स और मैसेजेस के साथ। आप सुन रहे हैं संदेश, आपके गीत हमारे, और एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
4: हाँ नमस्ते सर।
3: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
4: सर श्रवण कुमार परिहार, ग्राम हसनापुर, लतेहपुर जिला, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से सर।
3: ओहो।

0: ओ, क्या लंबा पता बताया आपने बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप?
1: हम बीबी जी राम जी में अभी हैं। संदेश
0: अच्छा, तो आज संदेश क्या देना चाहते हैं?
1: यही कि सर कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को देना चाहते हैं। ठीक
0: तो दे दीजिए, सुन रहे हैं सब आपको।
1: है सर, हर बार अगली बार भी इससे अच्छा ही मनाए यही प्रयास करते रहें सभी श्रोता।
0: थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आपका
1: ठीक है,
0: प्यार
1: नमस्ते
0: ऐसे ही
1: सर।
0: बना के रखिए। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।

सो ट्विस्ट किया कि नहीं किया? हाँ, अगर नहीं किया है तो ट्विस्ट कर लीजिए, उठिए और थोड़ा सा थिरक लीजिए। 11:35 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं क्या संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय इस प्रोग्राम में आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला लगातार बनी हुई है। और अनिल कुमार का मैसेज आया है हमारे पास, ये संदेश क्या भेजते हैं देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मैम, आज मेरा संदेश ये है कि जिन लोगों ने, जिन नेपाल में जिन लोगों को भी परेशानी हुई है, उनको, उनके साथ मदद की जाए। हमारे पास रोशनी रावत का मैसेज है, गुड मॉर्निंग रोली मैम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? लिखती है सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, और लिखती है त्यौहार खुशियों और उत्साह का अवसर है, लेकिन हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। भीड़ भाड़ में सावधानी रखें, दीपक और बिजली की सजावट का सुरक्षित उपयोग करें, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी। क्या बात है, आपने दो लाइन में सारी चीजें कह दी भाई। हमारे आसपास, हमारे घर परिवार और हमारे जो जो फेस्टिवल में हम जो कुछ भी करते हैं, उन सब में जितने एहतियात बरतनी चाहिए, फिलहाल आपने उन सबको मेंशन कर दिया है। थैंक यू सो मच, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए। हमारे पास मैसेज आया है रूपेश संघाई जी का, और ये लिखते हैं कि आप सब कैसे हैं, और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग कृष्ण भगवान पे लिख करके भेजा है। थैंक यू सो मच। कल्पना जी का मैसेज आया हमारे पास, और ये कोपर गांव से मैसेज कर रही हैं, और इन्होंने भी गाना लिखकर भेजा है, भाई क्या बात है। हमारे पास अजय सिंह जी का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग प्रिय आरजे रोली मैम, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं आपके क्या प्लान्स हैं, और वैसे थोड़ा समय भी शेष बचा हुआ है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ही समय शेष बचा हुआ है, आधे घंटे से थोड़ा ऊपर, थोड़ा कम। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया है वो मैं पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले ट्रैक सुनते, इसे इंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर। शुरू का लखनवी एहसास।

बारिशों का पानी और बारिश का मौसम चल भी रहा है और बारिश के मौसम से रिलेटेड कुछ हमारे पास कुछ बात भी है, चलिए बात करते हैं। हेलो, ओहो इनका तो कॉल ही कट गया। वैसे ये कहना चाह रहे थे कि बारिश में सभी लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं रहती है और ऐसे में बहुत सारे फ्लूज फैल रहे होते हैं। तो जहाँ भी भीड़ में जाए मास्क यूज़ करें और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रखें क्योंकि वैसे भी ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो, राइट। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ मिस्टर तिवारी थे जो कि हमारे साथ कॉल पे थे और अब उनका कॉल कट ही गया है। उन्होंने बोला था अगर मेरा कॉल कट जाए क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ तो प्लीज़ एक अच्छा सा ट्रैक हमारे लिए प्ले कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। सुरों का लखनवी एहसास।

हमारे पास मेल आया है बाबू अंसारी का और ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम अच्छा कर रही हैं, थैंक यू। और ये लिखती हैं कि गाने तो आप हमेशा चुन चुन के लाती हैं, क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं कि मैम आज ये संदेश है कि बारिश का मौसम चल रहा है तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास अल्ताफ खान का मैसेज आया है और ये लिखते हैं कि मैंने पहली बार आज ईमेल किया है और मैम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत कठिन लगने लगती हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं और शुक्र है कि मैसेज कर दिया और आप तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मैसेज करना बहुत इजी है, आप सीख सकते हैं और अगर नेटवर्क की कोई इश्यूज़ है तो वो भी सॉल्व हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ आप जो चाहें दुनिया में वो सब कुछ हो सकता है, बस आपकी चाहत में दम होना चाहिए, है ना। और फिलहाल एक नेक्स्ट ट्रैक है, उसे एंजॉय करते हैं और उसके बाद शायद हम अपने एक और कॉलर से बात कर पाएं।

हमारे पास मनन अंसारी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और ये लिखते हैं, हमेशा मैं एक घंटे प्रोग्राम में कोई सॉन्ग्स थी, मतलब एक घंटे के प्रोग्राम में और कहीं चैनल चेंज करने का मन नहीं करता है, मज़ा आ गया सुपर हिट सॉन्ग्स सुनकर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सबको प्रोग्राम अच्छा लगता रहे तो इससे अच्छी क्या बात है, हमारे लिए तो यही सबसे खूबसूरत बात है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और सुनने में मज़ा आ रहा है। फिलहाल आज का ये जो प्रोग्राम है वो आप सब ने इंजॉय किया, लेकिन साथ साथ उसकी तैयारियां भी तो की आज के इस बहुत खूबसूरत से बहुत प्यारे से पर्व। आज हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम आज सुबह से कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की लगातार सारी सीखों को अपनी ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकली अगर उतारते हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसे भी औसम हो जाती है। और कितने ही सारे लोगों ने आपको ये बताया कि कृष्ण भगवान की कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ के ट्रैक को सेट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हे कान्हा, हमारे जीवन से मुश्किलें पूरी तरह ख़त्म ना भी करो लेकिन उन्हें सामना करने की हिम्मत ज़रूर देना। हमारे रास्ते हमेशा आसान ना भी हों लेकिन हर मोड़ पर सही दिशा दिखाना ये ज़रूर करना। और सबसे बढ़कर हमारे दिलों में प्रेम बनाए रखना, एक दूसरे से हम बिल्कुल अच्छे से प्रेम करें, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, तो ये एक अलग ही खूबसूरत बात होगी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो जाए। क्या कहते हैं आप सब? तो भाई इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कान्हा की तरह जीवन को थोड़ी शरारत, बहुत सारा प्रेम और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ जीते रहिए, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज तो ये सारी सीखों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज का जो दिन है वो सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि हमें याद दिलाता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा अपने आप को संभाल कर अपने आप को आगे और पूरी तरह से अपने आप को साध लेना चाहिए। राइट, फिलहाल एक ट्रैक सुनते हैं और उस ट्रैक के बाद वापस आते हैं।

0: कभी तो खैरियत पूछो राधा
1: जी। बिल्कुल, पूछने के लिए हम आ गए, हाजिर है, हमें देख ही नहीं रही है। प्यारी लग रही तो देखेंगी नहीं क्या?
0: नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, देखिए देख रहे। और राधा और रोली जब मिल जाए
1: जी
0: तो जन्माष्टमी में कमाल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और देखिए जन्माष्टमी है और राधा रोली का तो होना जरूरी है ही।
0: हाँ, और भाई राधा रहने वाली है आपके साथ और जन्माष्टमी पर विशेष त्यौहार राधा आपके साथ रहने वाली, तो राधा की ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें सुनिएगा। अगले कुछ घंटे राधा के साथ बिताएंगे आप।
1: जी हाँ, हाथी घोड़ा पाल की
0: जय, कन्हैया लाल की। सो रोली सेज टाटा बाय, अपना ध्यान रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा और आज का फेस्टिवल एंजॉय करेगा। मैं मिलती हूँ फिर किसी दिन किसी और शो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। हापुड़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर एक धार्मिक और आस्था का स्थान है, वहां धर्म और परंपराओं से जुड़े लोगों की भूमिका होनी चाहिए। धर्माचार्यों और पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा नामित लोगों को वहां जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जो धर्म के विस्तार, संरक्षण और उसकी परंपराओं के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा से राम मंदिर सीईओ बनाए जाने पर सवाल उठाए। अजय राय ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नव निर्वाचित सीईओ अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव महंत गोविंद देवगिरी ने कहा कि शुक्रवार को नव निर्वाचित सीईओ के साथ बैठक है, उसके बाद तय करेंगे कि उन्हें अपना पदभार कब ग्रहण करना है। महंत गोविंद देवगिरी ने कहा कि राम मंदिर में आरती पूजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। हम एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व समाप्त होने के बाद शनिवार की सुबह से आरती की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली परिसर में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक भर्ती आयोजित होगी। सेना भर्ती रैली के दौरान 12 जनपदों बरेली समेत बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फरुखाबाद और बदायूं के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सेना भर्ती के निदेशक ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने साथ रखें एवं सभी जरूरी कागजात भी साथ में लेकर आएं। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को तय समय सीमा से निस्तारित करने के लिए ये पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसीन गांव में मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा घर ढह गया। हादसे में पिता और 2 मासूम बच्चे मलबे में दब गए, जबकि मां बाल बाल बच गई। थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

जी, 12:06 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है स्वयं सिद्धा, जहां आज आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राधा।

माखन की मटकी और बांसुरी की मीठी तान, यशोदा की ललना में बसती है हम सबकी जान। आया है पावन जन्माष्टमी का ये उल्लास भरा त्योहार, चलिए मिलकर हम सब कहें अपने कान्हा को हैप्पी बर्थडे 100-100 बार।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, सुरों का लखनवी एहसास।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, सुरों का लखनवी एहसास।

0: जी हाँ, आज फिजाओं में एक अलग सी महक है क्योंकि आज हमारे नटखट नंदलाल का जन्मोत्सव है। तो भाई, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहाँ हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, भाई घर भी देख रही हैं, बाहर ऑफिस भी देख रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है हमारी घर पे, आज उनकी छुट्टी होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो दफ्तर में आज भी काम कर रही हैं। तो दफ्तर की जिम्मेदारियां और घर में कान्हा के जन्म की तैयारियां, एक वर्किंग वुमन के लिए आज का दिन थोड़ा भाग दौड़ भरा जरूर होगा, क्योंकि भाई काम दोनों तरफ देखना है, घर भी देखना है, त्योहार भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना है। लेकिन उल्लास से भरा ये जो आज का दिन है, ये अपने आप में इतना उत्साहित वाला दिन है कि हम आज पूरी, मेरी आवाज से आपको लग रहा हो, इतने ज्यादा उत्साहित है। मुझे लगता है कि आप सब भी, ये दिन इतना खास, इतना पावन, और सोचिए कान्हा का हैप्पी बर्थडे है और राधा आज शो कर रही हैं, तो भाई आज का दिन एकदम स्पेशल धमाल होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो ट्रैक पे।
1: रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का

जी हाँ, 12:21 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। जी हाँ, गाने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जन्माष्टमी का रंग पूरे भारत में अलग अलग तरह से निखरता है। एक तरफ मथुरा है, एक तरफ वृंदावन है, और जहाँ पे रास लीलाओं और मंदिरों की भव्यता मन मोह लेती है। अब मथुरा और वृंदावन का जन्माष्टमी की कहना ही क्या, वहाँ मतलब इतनी भव्यता होती है कि मन होता है जाने का। लेकिन अगर आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। वहीं गुजरात के द्वारिका में इसे एक शाही पर्व की तरह मनाया जाता है। दक्षिण भारत में जाएं तो गोकुलाष्टमी पर घरों के आंगन में चावल के आटे से कान्हा के छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। अब भारत के किसी भी कोने में हो, दफ्तर में बैठे बैठे ही सही, आज इस उत्सव की ऊर्जा अपने आप अपने भीतर आप महसूस कर रही होंगी, है ना? क्योंकि ये त्यौहार इतना खूबसूरत है, और जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, ये इसकी तैयारी तो आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी होंगी। बाजारों में ढेर सारे आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मैं सजाने की सामग्री लेकर आऊं, ताकि मैं मंदिर को सजा सकूं, घर को सजा सकूं। और सबके घरों में, ज़्यादातर घरों में छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी होते, उनके लिए सजाने के लिए, उनके लिए पोशाक लाना, उनके लिए जेवर लाना, मतलब लगता है कि ये त्यौहार इतना क्या ही कर दूँ, इतनी खुशी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और अगला जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गाना भी बड़ा ख़ास है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग सी उत्साह होती है ना? और कुछ ऐसा ही ये उत्साह, एनर्जी इस गाने के भीतर भी आपको मिलेगी। तो चलिए भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी, 12:28 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जहां हम आज बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कामकाजी महिलाएं अपना भी ख्याल रखें और त्योहार भी खुशी खुशी मनाएं। स्वयं सिद्धा सुन रही वो सभी महिलाएं जो आज दफ्तर में हैं, जिन्होंने व्रत भी रखा है। आपको अपनी सेहत का खास खास ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर जी हाँ, काम की धुन में हम पानी पीना भूल जाते हैं और शाम तक सिर दर्द शुरू हो जाता है। अपनी अपने आसपास पानी की बोतल जरूर रखें, और निर्जला व्रत अगर आप रखती हैं, रख सकती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर ये नहीं कहते कि आप कर्म ही पूजा है, आप जो कर्म कर रही हैं उसको करते रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। फलाहार लीजिए, चाय या कॉफी की जगह आप नारियल पानी लीजिए, ताजे फलों का जूस लीजिए और अपने बैग में थोड़े से जो भुने मखाने हैं, बादाम भी रखे रहिए, ताकि समय समय पर आप खाती रहिए। खाना भी यही चाहते हैं ना कि आप स्वस्थ रहिए और उनका हैप्पी बर्थडे मनाइए।

जी हाँ, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। 12:35 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहां आपके साथ हूँ मैं राधा और हम मना रहे हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उनका जन्मोत्सव। और मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो दफ्तर से थक हार कर जब घर आइएगा ना, तो अकेले ही काम में मत जुट जाइएगा। टीम वर्क, जी हाँ, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर में भी जरूरी है। अपने घर के नंद बाबा यानी अपने भाई, आप आज के दिन यशोदा माता हैं, तो आपके पति जी से कहिएगा कि वो बाजार से फल फूल बाकी चीज़ें लें, बच्चों को लड्डू गोपाल जी का झूला सजाने का काम दे दीजिएगा। जब पूरा परिवार मिलकर काम करता है ना, तो त्यौहार मनाने का मज़ा दोगुना हो जाता है ना, और आपका आपकी जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी, और जो थकान है वो उत्साह में, एनर्जी में बदल जाएगी। लगेगा कि अरे क्या मैं थकी थी क्या। और धीरे धीरे जो भोग लगाने हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सारी चीजें भी आप तैयार करेंगे, और देखिए ना, आपकी थकान भी कम हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हमें आपका कितना ख्याल है, और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा। अभी फिलहाल ये प्यारा सा खूबसूरत सा सॉन्ग आ रहा है आपका रेडियो सेट पे, एंजॉय करिए।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 14 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा सिरथिपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री तानिंग ताको, श्री हेमांता स्वर्गिरी और श्री लाम त्रिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री सांगे टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरे मुल्क के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य

0: अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के

0: अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात अनूप जलोटा के आवाज में चंद हिंदी भजन। तो चलिए श्रोताओं, पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार।

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति. देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी. तब स्वर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास. लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन.
2: कवि ने कहा है और मैंने तो कहीं यहां पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत को बाहर जो हुआ है वो तो बगीचा के लिए कहा.

这个叫做敲打他的马腿，那个女武员那个大后手的机械，我说我们在那边买的，咱们在西亚大陆的机械，那个农业工啊，要到安西，安西生意什么事啊？人家生意平稳，生意水不能上，我上的是买买买家，咱们农业工啊，我一心做黑，我是上的我是不能来家。तो मुझे बाइंग लगेगा ना भी लगेगा लेकिन यहाँ कब लगेगा कि जब पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए दिल साफ हो जाए दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा वो तो नहीं है उसमें से तो पाकिस्तान वो तो दूसरे साल हो जाता है लेकिन अगर वो बदलता है और शक्ल बदले कि वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो यहाँ शेतर में रहता है खुला भी रास्ता है ऐसा कर ली

जन्नत बाहर नहीं पड़ा है, जन्नत तो क्या है। अरे लोगो आइए, जन्नत में लेना है, जन्म में देखना है कि इस नगर में प्रवेश करो। ऋषि ही पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है, ऐसे ही हम है। पाकिस्तान में हमारे भाई है, हम उनके भाई है, वो हमारे भाई है। हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो है, रह जाए रहा तो क्या, न रहा तो क्या, हमारा दिल में खो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना। दोनों हुकूमत अलग अलग कहीं जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी, अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे उससे उसको क्या, आपको क्या पड़े। मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान की देहात है तो उस 60,000 देहात की वो हुकूमत बनी है समय, उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है, उसको बड़ा अच्छा है, उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा, सरस होगा और तब तो कुछ वो देहातों का काम तो देनी पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से। ऐसी वो खूबसूरत चीज है तो मुझको तो खेती की देगी घोट में पी लेता और कोई तो कहने के तो पीछा बिल्कुल आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का क्यों आशा रहता है, लेकिन मैं क्या करूं, बना हूं इसे। और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है, पढ़ता नहीं था। ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ, आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ। वो अखबारों को भी पढ़ता जाता नहीं था, पढ़ता नहीं था। अंग्रेजी उसको कहाँ इतना आता था, अंग्रेजी बड़ी मुसीबत से थोड़ा पढ़ता था और ऐसा गुजराती भाषा जान लेता था। वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सके, उनको दिखाएगा कैसे पड़ेगा, ऐसा अनजान आदमी। तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में वो राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बनकर रहे और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं। ये मेरा ख्वाब। तो अगर लोग उसको सुनाते हैं सब जगह से तार लेते हैं तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ शायद वो ख्वाब स्वरा तो आया उनको तो कम आए उसको निश्वाद मानता नहीं हूँ, लेकिन इसी जमीन में जो उस वक्त एक जवानी है और जवानी भी सब होती थी उसमें ये ख्वाब मैंने देखा और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़के है ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा। अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया, हिंदू मुसलमान कोई आपस व्यक्ति फिरते नहीं है और इस तरह से रहते हैं। हाँ आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने, मैं भी आप क्या सुना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है तो बात तो सच्ची वो कहता है बुरा मूर्ख है उससे क्या हुआ। तो उसकी बात है ऐसा करो, मुसलमान मान ले, हिंदू मान ले, सिख मान ले, पारसी मान ले, ईसाई मान ले, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में कायम रहे, अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। एक किसी को दिखेगा नहीं तो मुसलमान है, पारसी है, शरीफ आदमी है, साकार जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा। आप नाचेंगे नचा नहीं करता, वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा बना देगा और इसी दुनिया बन रही है जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता रहता है। वो कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहीं तो हमको किसी से नहीं डरते, एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और ईशाकाश में पड़ा है। उस ईश्वर से हम डरते हैं, उसे किसी से नहीं डरते हैं। अरे देखो ये पहाड़ जैसा पठान है, सीख है, उसे नहीं डरते हैं। मैं तो डर जाता हूँ तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ। डर के लड़के डरते हैं, ईश्वर से ही दूसरे को कह सकते।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा से चंद हिंदी भक्ति भजन।

अनूप जलोटा के इन्हीं हिंदी भक्ति भजनों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सांझा मर्फ्यू और साथी कलाकारों के आवाजों में चंद बुगुन सामुदायिक नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत सांझा मर्फ्यू और साथी कलाकारों से चंद बुगुन सामुदायिक नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं भी अब सुन रहे थे सांझा मार्फियो और साथी कलाकारों से चंद बुगुन सामुदायिक नगमे। इसी के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग की तीसरी सत्र की छात्रिका कुमारी सांग यूटन से वृक्षारोपण के महत्व विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सांग यूटन दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय में तीसरे सत्र की छात्र हूँ। आज मैं वृक्षारोपण की महत्व विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहूँगी। उस हरियाली की जो न केवल हमारी पर्यावरण की शान है बल्कि पृथ्वी के संतुलन की पहचान भी। प्रिय श्रोताओं, पेड़ पौधे केवल हरियाली ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की आधार भी प्रदान करते हैं। वे हवा को स्वच्छ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं और वर्षा के संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्ष हर मौसम में हमारे अनमोल साथी है, गर्मी में छाया बनकर, बरसात में सुरक्षित बनकर और हर पल जीवन सहायक बनकर। परंतु बढ़ती जनसंख्या शहरी के कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। जहां कभी हरी भरी वन संख्या लहरती थी, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। इस स्थिति की बदलना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक वर्ष में कम से कम एक पौधा लगा

0: इकबाल अपने बच्चे की तरह करें, तो आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण देने का हमारा संकल्प पूर्ण हो सकता है। पेड़ केवल प्रकृति का उपहार नहीं, वे हमारी विरासत है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, धरती को हरा भरा बनाने का, पर्यावरण को हरा भरा बनाने का और वृक्षारोपण को अपनी दैनिक आदत बनाने का, क्योंकि जब पेड़ बचेगी तभी जीवन बचेगा। आकाशवाणी से यह प्रस्तुति आपको समर्पित थी, एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरी भरी पृथ्वी के नाम। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग की तीसरी सत्र की छात्रिका कुमारी सांग यूटन से वृक्षारोपण के महत्व विषय पर एक वार्ता।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है सिमरन फिल्म से गुरु रंधावा और जोनिता गांधी की आवाजों में, बोल वायु के और संगीत सचिन जिगर का।

हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा नगमा, स्वर श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के तथा संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, नारे संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

0: जब तक है जान फिल्म के इस गीत के साथ ही महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए सत्यमेव जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में, गीतकार कुमार और संगीत रोचक खोली का।

टू स्टेज फिल्म से भी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा, स्वर अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा के तथा संगीतकार शंकर एहजान लॉय। अगला नगमा पेश है बेनी दयाल और शिफाली आल्वारेस की आवाजों में। ये जवानी ये दीवानी फिल्म के इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभिजीत श्रीवास्तव और रूपाली मोगे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बधाई दो फिल्म का नगमा, बोल वरुण ग्रोवर के और संगीत अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीत मंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के

0: मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

सूर्यवंशी फिल्म से पेश है अगला नगमा अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में, गीतकार रेशमी विराग और संगीत जैम 8 का।

अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे केसरी फिल्म का नगमा, बोल एवं संगीत तनिष्क बख्शी का। अगला नगमा सुनिए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शरीफ तोशी द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है अहमद अनीस ने।

0: लवाजकल फिल्म से भी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का। श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है।
1: लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से, क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें, अपना ओरिजिनल डिजिटल कॉन्टेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड Your entry submitted successfully. Gems of India, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित उल्लास बापट से संतूर वादन। राग है रागेश्री तथा तबले पर संगत दिया है पंडित विभा नागेशकर ने।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे रागेश्री राग पर पंडित उल्लास बापट से संतूर वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा स्वेच्छा से LSC से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री PD सोना ने विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा महिलाओं और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। ईस्ट सियांग जिले के रायांग निवासी गोमन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बने। कैपिटल कॉम्प्लेक्स अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 6वें संस्करण का नाहरलगन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ST C सेंटर में शुभारंभ। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा है कि ये राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। इस दौरान श्री मोदी ने कहा है कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष V. नारायणन ने कहा है कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और

0: मजबूत करेगा।
1: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जीएसएलवी।
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्धवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा है कि वो दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने के लिए उत्साह है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
3: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि यह पवित्र त्यौहार सभी को प्रेम, करुणा, सत्य, सद्भाव और अनेकता में एकता जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की याद दिलाती है और उनके जीवन व शिक्षाओं का उत्सव मनाती है। उनकी कालजयी समझ मानवता को हमेशा रोशन करती रहेंगी। राज्यपाल ने कामना की है कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हर घर में शांति, सुख और समृद्धि लाए और उनका दिव्य ज्ञान हमें उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक, करुणा और सदाचारी जीवन की ओर ले जाए। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदन के प्रस्तावित कार्यों पर विचार विमर्श किया गया और आगामी विधानसभा कार्यवाही के लिए कार्यक्रमों की सूची को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह की चर्चाएं सदन के कामकाज को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे राज्य और लोगों से जुड़े विषयों पर सार्थक विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CDPO तवांग दोंदो पेमा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कल्याण, गरिमा और अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों, योजनाओं और संस्थागत सहायता तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया। ईस्ट सियांग जिले के रायंग निवासी गोमन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बन गए हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित बी ग्रेड कलाकार का दर्जा प्राप्त किया। इस उपलब्धि के अलावा गोमन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली CCRT छात्रवृत्ति के भी प्राप्त करता है। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग तथा आसपास के गाँव के

0: स्वेच्छा से आगे आए हैं। ग्रामीण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बावजूद ग्रामीण सिर पर सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं सेना तक पहुँचा रही है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के छठे संस्करण का नाहरलगन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI STC सेंटर में शुभारंभ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम है कौशल, एकाग्रता और खेल भावना की भावना का उत्सव मनाना। चैंपियनशिप में पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदारी देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आए विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए पूजनीय प्रोफेसर जमदों रिमुचे जी से 6 सत्रीय गुरु योग का प्रवचन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग तवांग के 2री कक्षा की छात्री का कुमारी सुनीता नायक से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में आनंद लीजिए राधे श्याम फिल्म से अरमान मलिक, रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा, कबीर सिंह फिल्म से अरिजीत सिंह, सनम रे फिल्म से अरमान मलिक, पलक मुंचल और अमाल मलिक, एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, शेफ फिल्म से अरमान मलिक और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से पलक मुंचल के आवाजों में संगीतकार अमाल मलिक द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 7:50 पर। आज 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 5 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह मुनपा कार्यक्रम क्षमा करें रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक तंगसा नगमों का आनंद लीजिए कैंगलिंग कैंगलांग चोशम लोंगफी कोचोंग लोंगरी और साथियों के आवाजों में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजिन चोकी से स्कूली जीवन के अनुभव विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन।

ये जवानी ये दीवानी फिल्म से रेखा भरद्वाज और विशाल शेखर, तुम मिले फिल्म से नीरज श्रीधर और सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए बरेली की बर्फी फिल्म से आर्को, सनम रे फिल्म से अरिजीत सिंह और अमाल मलिक, हॉलीडे फिल्म से अरिजीत सिंह, रईस फिल्म से हर्षदीप कौर और अरिजीत सिंह, गोलमाल अगेन फिल्म से नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर, टाइगर जिंदा है फिल्म से अतीफ असलम, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह, सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन और डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से खयाल, कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए लामा नवांग नरबू जी से ग्यावा पंचेन रिमुचे के जीवन चित्र उपन्यास का 5वां भाग कल शाम 5:00 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए पूजनीय प्रोफेसर जमदों रिमुचे जी से 6 सत्रीय गुरु योग का प्रवचन। देरिम सेडा शाम 6:00 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए पूजनीय प्रोफेसर जमदों रिमुचे जी से 6 सत्रीय गुरु योग प्रवचन का शेष भाग कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में सुनिए जिला अस्पताल तवांग के एनसीडी सेल की मनोवैज्ञानिक सुश्री लोपसांग यूटन से तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के विषय पर एक भेंट वार्ता। दोनों गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज में आनंद लीजिए कश्मीर की कली और सिलसिला है प्यार का फिल्म के धुन और गीत का कल शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए मैरी कॉम फिल्म का एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8:00 व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय

0: is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग तवांग के दूसरी कक्षा की छात्री का कुमारी सुनीता नायक से एक अंग्रेजी कविता। कविता का शीर्षक है माय बाइसाइकल।
2: Dasidile everyone, my name is Sunita Nayak. I read in class 2. My school name is Government Upper Primary School Khemetang. Today I am going to recite a poem. The title of my poem is My Bicycle. My bicycle, I have a red bicycle. I pedal and I ride. Trin, trin, trin, cross the well. Makes my fence move aside. The seat is blue in color. The tires and pedals are black. Sometimes fast, sometimes slow. But my bicycle is always on track to keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. Thank you.
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग तवांग की दूसरी कक्षा की छात्रिका कुमारी सुनीता नायक से एक अंग्रेजी कविता। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:11 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप आनंद लेंगे संगीतकार अमाल मलिक द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं राधे श्याम फिल्म से अरमान मलिक के आवाज में। गीतकार रेशमी विराग और संगीत अमाल मलिक का।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में। रॉय फिल्म के इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत से सवारा है अमाल मलिक ने।

कबीर सिंह फिल्म से सुनिए अगला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में। अमाल मलिक द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार अमाल मलिक द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमे आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं सनम रे फिल्म से अरमान मलिक, पलक मुंचल और अमाल मलिक की आवाजों में। गीतकार मनोज यादव और संगीत अमाल मलिक का।

अरिजीत सिंह, अमाल मलिक और तुलसी कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म का नगमा, बोल कुमार के और संगीतकार अमाल मलिक। श्रोताओं, दर्पण कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है शेफ फिल्म से अरमान मलिक के आवाज में। रेशमी विराग के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अमाल मलिक ने।

शेफ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से ईओएस 05 को लेकर जीएसएलवी F17 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। ईओएस 05 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के प्रक्षेपित भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई मजबूती और व्यापकता प्रदान कर रही है। तथा पूरे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की क्षमताओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने इसे इसरो की उत्कृष्ट उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पवित्र त्यौहार सभी को प्रेम, करुणा, सत्य और सद्भाव के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का स्मरण कराती है और उनके जीवन तथा शिक्षाओं का उत्सव है। उनकी शाश्वत शिक्षाएं आज भी मानवता का मार्गदर्शन करती है। राज्यपाल ने कामना की है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्रत्येक घर में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए तथा उनका दिव्य ज्ञान सभी को उद्देश्यपूर्ण, गरिमापूर्ण एवं करुणामय जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करे। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज चौखाम में ज्ञान भारतम का शुभारंभ किया और अरुणाचल पाली विद्यापीठ स्कूल स्थित ताई खमती एवं सिंगफो संग्रहालय में मैन्युस्क्रिप्ट स्कैनिंग और डॉक्यूमेंटेशन सुविधा का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हमारे समुदायों के कई पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान, साहित्य, परंपराएं एवं बुद्धिमत्ता समाहित है। ज्ञान भारतम मिशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण कर उसे साझा करना है। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं जनजाति कार्य मंत्री केंतु जेनी ने लोअर सियांग जिले में हिमे, गर्मे और आसपास के गांवों का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया एवं स्थानीय निवासियों से बातचीत की। यह दौरा असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर हाल ही में हुई हिमे बदौती घटना के बाद बनी चिंताओं के बीच की गई है। इस अवसर पर श्री जेनी ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें सभी संबंधित पक्षों के बीच समयबद्ध संवाद और आपसी समझ की आवश्यकता है। दौरों के दौरान दल ने समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से दूर रहने की अपील की जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित एवं स्थिति और गंभीर हो। इस दल में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कार्दोनी क्योर, विधायक पर्सी जिलन और तोजिर कादू, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर सियांग स्टूडेंट्स यूनियन, गालो वेलफेयर सोसाइटी के लोअर सियांग जिला इकाई के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी शामिल हुए। असम राइफल के मुख्यालय 25वें सेक्टर असम राइफल के तत्वाधान में खोंसा बटालियन ने आज तिरव जिले के खेती गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त एक वाहन को सफलतापूर्वक निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही खोंसा बटालियन के जवान तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण भूभाग और सीमित पहुंच के बावजूद जवानों ने तत्परता और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए दुर्घटनास्थल तक पहुंच बनाई। समन्वित प्रयासों के माध्यम से वाहन को सफलतापूर्वक बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जिससे वाहन को और नुकसान होने तथा सड़क के अवरोध उत्पन्न होने से रोका गया। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज तवांग जिले की डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में चौथी जिला स्तरीय निगरानी समिति DLMC की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में MLA, LADS, MP, LADS और ऑनटाइट फंड सहित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

0: implementation of various flagship programs, centrally sponsored schemes and state-funded schemes, including MLA-leds, MP-leds, and untied fund, with emphasis on timely completion, quality of works, and effective utilization of public assets. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आज इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश किया है मंडरेलिंग तवांग से थिंजन डोलकर सरगी रेपा और इंजीनियरिंग कॉलोनी तवांग से पेमा यांगजुम ने। आपकी फरमाइश पे पेश है गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार का गाया गीत, बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है न्यूमधुम तवांग से सांगे टाशी और टाशी ड्रमा चुम, ईटानगर से पासंग छोटन और युसर तवांग से सोनम छोटन से कायमत से कायमत तक फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, गाया उदित नारायण ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। हेलम आसाम से ज्योति सुरेन की फरमाइश पर सुनिए सागर फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

अगला नगमा सुनिए सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जिया उर रहमान के फरमाइश पर हीना फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल एवं संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है महुआ फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत। सोनी कौमी द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है कमर जलालाबाद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईरा

0: अज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में। भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर महिला क्रिकेट टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। पिकल बॉल विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक 37 पदक अपने नाम किए। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज का अहमदाबाद में भव्य उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात और भारत वैश्विक स्तर पर खेल आयोजन का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर। और भारत जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जापान के साथ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए बैडमिंटन कोर्ट से आई एक बड़ी खबर के साथ, जहां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स कारूप रस्मुसेन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का सफर आज समाप्त हो गया, उनको हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। और इस मैच पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, क्या शानदार आज का खेल रहा, स्पेशली वो तीसरा गेम जहां एक वक्त पे लग रहा था कि मुकाबला हाथ से निकल रहा है, लेकिन कितनी स्पेशल है ये जोड़ी की हर बार कमबैक करती है, फाइटबैक करती है, जीतती और भारत की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ती है।
1: जी शक्ति, बिल्कुल कांटे का मुकाबला था, जहां तीसरे सेट तक जो विजेता है उसका पता नहीं चल पा रहा था, वहां सात्विक चिराग ने वापसी करते हुए मुकाबले को अपनी ओर खींचा। और एशियन गेम्स से ठीक पहले इस टूर्नामेंट में लय पकड़ना काफी हद तक इशारा करता है कि एशियन गेम्स 2023 में इस जोड़ी ने गोल्ड जीतकर जो कारनामा किया था उसे दोहराना चाहेगी। सात्विक चिराग सबसे सफल भारतीय जोड़ी है बैडमिंटन में, और इसके अलावा इन्होंने एशियन गेम्स 2023, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ 2022 में थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके भारत के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 2023 में नंबर एक स्पॉट इन्होंने हासिल किया था, इससे पहले 2022 BWF चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसके अलावा शक्ति बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया ओपन 2023 हो या सिंगापुर ओपन 2026, हर जगह खिताब जीतकर भारतीय जोड़ी ने अपने आप को साबित किया है। साथ ही साथ एक मुकाबला और, आज एक और टूर्नामेंट चल रहा है इंडोनेशिया मास्टर्स, जहां पर भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब और मानसी सिंह ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए डबल गुड न्यूज, जहां मानसी सिंह और अनमोल खरब भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आपने जिस तरह बताया कि एक बहुत लंबी तहरिस्त है इन खिलाड़ियों के पदकों की और इनके प्रदर्शन की, कह सकते हैं कि भारत की सक्सेसिव जीत की जोड़ी है, क्योंकि जब भी उतरती है पदक के साथ वापस आती है। और जिस तरह बीता वर्ष गुजरा, इंजरीज थी, कभी सात्विक फिट होते तो चिराग के साथ इंजरी, लेकिन उससे पार पाती हुई ये जोड़ी अब नजर आ रही है। और उम्मीद होगी कि एशियन गेम से ठीक पहले चाइना मास्टर्स का खिताब जीते और एक बहुत शानदार लय के साथ एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया जाए। और स्क्वाश के मैदान में भी एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज रात तकरीबन 11:15 पर खेला जाएगा, जहां लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की अना हट सिंह का मुकाबला मलेशिया की शिव सांगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। कार्यक्रम में अब बात क्रिकेट के मैदान की। भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर महिला क्रिकेट टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम मात्र 56 रन पर सिमट गई। इस शानदार जीत के साथ ही हरमनप्रीत एंड कंपनी ग्रुप ए में +5.775 की नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पर है। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
2: स्टार भारतीय बल्लेबाज उप कप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर गरजा। स्मृति ने 64 गेंदों पर 124 रन की शानदार शतकीय पारी खेलते हुए न सिर्फ भारत की जीत पक्की की, बल्कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट गंवाकर 193 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 48 गेंदों में 74 रन की साझेदारी की।

0: हांगकांग के लिए मरीना लैम्पोलो ने दो विकेट तथा रुचिता वेंकटेश और जाइलीन कोर ने एक एक विकेट लिए। भारत के इस विशाल लक्ष्य के जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 20 गेंद शेष रहते मात्र 56 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हांगकांग टीम का कोई भी खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका। टीम की पारी का आलम यह रहा कि 11 में से 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पहले मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा ने इस मैच में भी 3 ओवर में महज 9 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि नंदिनी शर्मा, श्रीधरन ने और प्रेमा रावत ने 2-2 सफलताएं हासिल की। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा शतक लगाने वाले स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही स्मृति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तीनों प्रारूपों में कुल मिलाकर उन्होंने 10,880 रन बना लिए हैं। स्मृति ने भारत के पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा। उप कप्तान मंधाना के बल्ले से निकला ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18वां शतक था, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाला खिलाड़ी भी बना दिया है। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक क्षण पर भारत की इस स्टार खिलाड़ी ने क्या कहा।
1: I always felt this is my job. I never thought of anything else than that record, the numbers, the amount of matches you win for India, and that is a measure which you take back. You don't take back what how many runs or records you've broken. But yeah, something which I think I really pride myself is helping people around, being there for the other batters, and hopefully there'll be 3-4 more in the list of 10,000 from the Indian setup, and that is something which I would like to be measured with. Grown up watching Mithali Di bat, she's been such a idol for everyone growing up. I never in my dreams ever imagined that I would get 10,000 and or go past her.
0: अब एशिया कप में अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में पहले जगह पक्की कर चुका भारत पाकिस्तान पर जीत दर्ज करके अपने ग्रुप अभियान का शानदार समापन करना चाहेगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
2: पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले ये शतक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कई गेंदबाजों की नींद उड़ाने का काम करेगा। विशेष श्रोताओं को ये ज़रूर बताइए कि अगर आंकड़ों की किताबों को टटोला जाए तो कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिलाओं की तरफ से सबसे अधिक रन और सबसे अधिक शतक।
3: भारत के लिए ये गौरव की बात है क्योंकि इससे पहले भी ये रिकॉर्ड जो है मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 10,868 रन बनाए थे, उनका ही रिकॉर्ड पीछे छोड़कर स्मृति मंधाना नंबर वन पर पहुंच गई हैं। और अभी टॉप फाइव में अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो स्मृति मंधाना और मिताली राज दो नाम आते हैं। और अगर जैसा कि मिताली राज ने कहा कि वो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को देखना चाहती हैं टॉप फाइव में, तो हरमनप्रीत कौर एक प्रबल दावेदार है जो पांचवें नंबर पर पहुंच सकती हैं। वो 9076 रन बना चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और वो सिर्फ स्टेफनी टेलर से पीछे हैं जिन्होंने 9449 रन बनाए हैं।
2: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जैसे स्मृति मंधाना ने कहा भी कि वो चाहती हैं कि कम से कम 3 से 4 खिलाड़ी इस टॉप 10 की टेबल पर नजर आए, तब भारत का दबदबा साफ नजर आएगा। लेकिन ये प्रतियोगिता अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भारत सेमीफाइनल का स्पॉट फिक्स कर चुका है, हालांकि कल अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान से है तो भारत किसी भी तरीके से हारना नहीं चाहेगा और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरे ग्रुप की क्या स्थिति और कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में अब तक अपना स्थान पक्का मान चुकी हैं?
3: शक्ति, जैसा आपने बताया कि भारतीय टीम अपना स्पॉट जो है फिक्स कर चुकी है, अगर ग्रुप बी की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश में से किसी एक से भारत की भिड़ंत होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात पाकिस्तान की करें तो अगर वो कल का मुकाबला हारते हैं और अपना आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं तो रन रेट और पॉइंट्स के आधार पर वो भी सेमीफाइनल में अपना स्पॉट लगभग फिक्स करते नजर आएंगे।
2: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक रोमांचक मुकाबला कल देखने को मिलेगा भारत को। और अब क्रिकेट के मैदान से एक और खबर का रुख करते हैं, जहां भारत और जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 22 सितंबर को जापान के साथ एक विशेष T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। ये मैच सानो शहर में स्थित क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा और ये दोनों टीमों के बीच पहला T20 मुकाबला है जो खेला जाएगा। ये वही वक्त होगा जब भारतीय टीम एशियाई खेलों के लिए जापान के आईची नगोया में होगी। भारतीय टीम इन खेलों में प्रतिभाग कर रही है। BCCI ने आज बताया कि ये स्पोर्ट 75 पहल का कदम होगा। ये पहल प्रधानमंत्री जो हैं जापान के सनाई तकाची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौतों का एक हिस्सा थी। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में टीम स्पर्धाओं के पहले दिन भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य के खिलाफ अपने तीनों लीग मैच में जीत दर्ज की।
4: वियतनाम के दनांग में खेले जा रहे

0: पिकल बॉल विश्व कप में हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनीश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल सादीवाला, नाओमी अमल सादीवाला, आलिया इब्राहिम और मिहिका यादव जैसे खिलाड़ियों वाली भारतीय प्रो टीम ने लीग स्टेज में आसानी से जीत हासिल की। भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा और इसराइल को 6-0 के स्कोर से हराया और फिर लीग स्टेज के आखिरी मैच में चेक गणराज्य को 5-1 से मात दी। प्रत्येक मुकाबले में 6 मैच खेले गए, जिनमें महिला डबल्स, पुरुष डबल्स, मिक्स डबल्स 1, मिक्स डबल्स 2, महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स शामिल थे। अब भारतीय टीम राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल का सामना करेगी। भारत अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पदक तालिका में 4th स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदकों के साथ कुल 37 पदक जीत लिए हैं। भारत की नज़र शनिवार और रविवार को अधिक से अधिक पदक जीत कर पदकों का अर्धशतक लगाने पर होगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बेहद रोमांचक खेल पिकल बॉल, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैडमिंटन का फॉर्मेट और टेनिस जैसा कोर्ट, वहां पर भी भारत के खिलाड़ियों का जलवा जारी है। और अब बात विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की, जिसका भव्य उद्घाटन समारोह आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि गुजरात और भारत आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर खेलों के आयोजन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहे हैं।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी को ये कहने जा रहा हूँ कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत की, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, चाहे पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। हम मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक सेंटर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
1: भारत एक बहुत बड़ा सेंटर खेल का बनके उभरने को तैयार है। भारत पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। कल से शुरू होगी, 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होगी। विशेष साबरमती रिवर फ्रंट सैलानियों के लिए बहुत शानदार जगह रही है, अपनी छुट्टियों और पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन अब गुजरात खेलों का एक नया केंद्र बन रहा है। कितना साबित किया है शहर ने, इस राज्य ने खुद को?
3: गुजरात ने मौका मिलने पर हमेशा अपने आप को साबित किया है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो गुजरात ने करी। और अभी पुलिसिंग गेम्स होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होने हैं, और हम सभी को पता है कि लक्ष्य सिर्फ एक है, ओलंपिक 2036 की मेजबानी करना। तो ये गुजरात के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से अपने आप को हर उस पैमाने पे खड़ा माना जाए जहाँ पे 2036 की हमारी मेज़बानी जो है उसकी दावेदारी मजबूत हो। और 2030 में वो लम्हा भी भारत देखेगा जब अहमदाबाद जो है कॉमनवेल्थ खेल यानी राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस भव्य आयोजन को होस्ट करेगा गुजरात। और एक और खबर, जो गुजरात के आयोजनों की बात हुई तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 6 सितंबर को सूरत में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 79वां संस्करण आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ और नशामुक्त जीवन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनमें फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा, विकसित भारत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि संडेज ऑन साइकिल और दूसरी फिटनेस गतिविधियों द्वारा फिट इंडिया पहल तक एक पीढ़ी तैयार की जा रही है जो स्वस्थ रहने और आत्मविश्वास से भरी है, अनुशासित है तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू, न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया, कहा

0: भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल

0: ऑप्शन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
2: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय

0: अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के तीन बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत तीन लोगों को हिरासत में लिया।
1: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
2: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
3: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishing